जनहित का लागि नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय को सहयोग रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार्यमा कुष्मा नगरपालिका पर्वत

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

आवाज बिहीन को आवाज परिवर्तन को संवाहक रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz। समय को आवाज़।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: सुरक्षित भविष्य को लागी जीवन बीमा गरौ। जीवन बीमा का लागी राष्ट्रीय जीवन बीमा कंपनी ले रोजौ। न्यून बीमा शुल्क में अधिक बोनस दर रहेको नेपाल सरकार को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त एकमात्र जीवन बीमा कंपनी बीमा को क्षेत्र में विश्वसनीय नाम राष्ट्रीय जीवन बीमा कंपनी साबिक को राष्ट्रीय बीमा संस्थान प्रधान कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौं।
1: हरी शरण म लक्ष्मी भुसाल सुनिराछु रेडियो एनआरएन 99.1
2: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो फिल्मी मेलोडी।

नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो फिल्मी मेलोडी। नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो फिल्मी मेलोडी।

0: Extreme energy drink.
1: चरक मेमोरियल हॉस्पिटल कर्मचारी संचय कोष द्वारा सूचीकृत अस्पताल
2: यस चरक मेमोरियल हॉस्पिटल मा कर्मचारी संचय कोष का संचयकर्ता लाई रु 1,00,000 सम्म को उपचार सहुलियत कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा

बीमा को लाभ दी आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस खुले जीऊ।

0: बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ।
1: निकट मा दीदी बहिनी, विकट मा दीदी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी।